अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर रचना सुनी, जिसके रचयिता थे इनके बेहरे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मालती पांडे के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना। संगीतकार हैं दादा चांदेकर।

संत जनाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। संगीतकार थे तादात सांदेकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत निवृत्तिनाथ की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत निवृत्तिनाथ की भक्ति रचना सुनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। रचनाकार हैं बाभव बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम उस्ताद शाहिद परवेज सितार वादन केळुत्तिरुविरि पक्कवाद्य तबला विजय घाटे कार्यक्रम मुंदुवरेसुत्ता इनीग राग रागेश्री आलाप जोड़ रूपक हागु द्रुतगत तीन ताल निबद्धवागिदे।
1: यू आर लिसनिंग टू सितार रिसाइटल बाय उस्ताद शाहिद परवेज इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री विजय घाटे। Continuing the concert, now listen to Rag Rageshri, Alap Jod, Gat in Rupak and Teen Taal.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है भैरव द्रुपद. कलाकार हैं सुमन गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबालनाथ और हारमोनियम पर हैं कमलाखा मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव द्रुपद. कलाकार हैं सुमन गुप्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad. Our artist is Shumona Gupta. Accompanying our artist on the pakhavaj is Prabalnath and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Bhairav Dhrupad, our artist Shumona Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव द्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थे सुमन गुप्ता, आपके साथ पखवास पर थे प्रबाल नाथ और हारमोनियम पर थे कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं अखिल रॉय, आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर संतूर वादन, कलाकार हैं अखिल रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू भैरव द्रुपद। Our artist was Shumona Gupta. Accompanying our artist on the pakhavaj was Prabal Nath and on the harmonium was Kamalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a santoor recital. Listen to a santoor recital in the rag Nat Bhairab. Our artist is Akhil Roy. Accompanying our artist on the tabla is Abhishek Chattopadhyay. Listen now to the santoor in the rag Nat Bhairab. Our artist, Akhil Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अखिल रॉय, आपके साथ तबले पर थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन द राग नट भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज अखिल रॉय, अकंपनिंग

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित दिनकर कैकिनी का गायन. राग है सावणी केदार. विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं तुम हो प्रवीण. द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं सोलह हो सिंगार किए सखी सजनी. In the program of Indian classical music, we present a vocal recital by Pandit Dinkar Kakani. Rag is Savani Kedar. Vilambit composition is set to Tilwada Tal and Drut composition in Teen Tal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग सावणी केदार। आपके साथ तबले पर संगत की पंडित राजेंद्र अंतरकर ने और हारमोनियम पर अनंत केमकर ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित दिनकर कैकिनी का गाया राग पूर्वी कल्याण। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मिलन भयो है। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है इसके बोल हैं धन धन भाग जागे।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग सावनी केदार बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय अनंत केमकर। एंड नाउ वी प्रेजेंट राग पूर्वी कल्याण बाय पंडित दिनकर कैकिनी। विलंबित एंड द्रुत कॉम्पोजिशंस आर सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर कैकिनी का गायन। आपके साथ तबले पर संगत की दीपक नेरूरकर ने और हारमोनियम पर बबन मांजरेकर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू वर लिसनिंग टू अ क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय पंडित दिनकर कैकिनी। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय दीपक नेरूरकर एंड ऑन द हारमोनियम बाय बबन मांजरेकर। This was a presentation of All India Radio, Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अभय नारायण मल्लिक का गाया राग अहीर भैरव. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं, प्रातः समय श्याम सुंदर को रूप निहारत. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग तोड़ी। बोल हैं परी आली री। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित अभय नारायण मलिक। नाउ लिसन टू राग तोड़ी। द आलाप इज फॉलोड बाय धमार। द वर्ड्स आर परी आली री। He is accompanied by Shri Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj.

0: अभी आप पंडित अभय नारायण मलिक का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय पंडित अभय नारायण मलिक। ही वाज अकंपनीड बाय श्री मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Go, my goodies, honey, son.

ఉంది. హృదయ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अलका देव मारूलकर का गायन, राग है कोमल ऋषभ आसावरी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्रीत न कीजिए। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है और उसके बोल हैं ना मोहे आस। In the program of Indian classical music, we present a vocal classical recital by Alka Dev Marulkar. Rag is Komal Rishabh Asavari. Vilambit composition is set to Ektal, Preet Na Kijiye, and Drut composition is set to Teen Tal, Na Mohe Aas.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था अलका देव मारुलकर का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी। आपके साथ तबले पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं अलका देव मारुलकर का गाया राग ललिता गौरी। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं प्रीतम सैया। द्रुत रचना भी तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं ध्रुव मंडल प्रसाद।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग कोमल ऋषभ आसावरी, कंटिन्यूइंग द क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय अलका देव मारुलकर। वी नाउ प्रेजेंट राग ललिता गौरी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल प्रीतम सैया, एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो सेट टू तीन ताल ध्रुव मंडल प्रसाद। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय जमाल खान एंड ऑन द सारंगी बाय उस्ताद सुल्तान खान।

0: यह था अलका देव मारूलकर का गाया राग ललिता गौरी। आपके साथ अबली पर संगत की जमाल खान ने और सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान ने। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अलका देव मारूलकर का गायन अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वॉज राग ललिता गौरी। विद दैट We conclude the classical vocal recital by Alka Dev Marulkar. She was accompanied on the tabla by Jamal Khan and on the sarangi by Ustad Sultan Khan.
2: This program was a presentation of All India Radio Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अनुरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चितरंजन दोलोई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन. कलाकार हैं सुनील चट्टोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen first to a khayal in the rag Gorakh Kalyan. Our artist is Sunil Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay and on the harmonium is Chittaranjan Doloi. Listen now to khayal.

0: अभी आप राग गोरख कल्याण पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील चट्टोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चित्तरंजन दोलोई। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री पर सितार वादन। कलाकार हैं शुभजीत मजुमदार।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग गोरख कल्याण। आवर आर्टिस्ट वाज सुनील चट्टोपाध्याय। Accompanying him on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay, and on the harmonium was Chittaranjan Dolui. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist is Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhuri. Listen now to the sitar in the rag Rageshri. Our artist, Shubhajit Mojumdar.

0: अभी आप राग रागेश्री पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शुभजीत मजुमदार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Rageshri. Our artist was Shubhajit Mojumdar. Accompanying our artist on the tabla was Timir Roy Chaudhary. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: नादसुधा रसम बिलनु त्यागराजस्वामी कृति आरभिरागम रूपकतालम।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा नादसुधा रसम बिलनु इन राग आरभी सेट टू रूपकताल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्यामलाल और साथी का शहनाई पर बजाया राग आभोगी। विलंबित गत एक ताल में एवं द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज रागम। टुडे इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट यू शहनाई।

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। ये था शहनाई पर बजाया राग आभोगी। कलाकार थे श्यामलाल वसाथी। और आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली हुसैन वसाथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री।
1: दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल इन राग आभोगी रिसाइटेड बाय श्यामलाल एंड पार्टी। वी नाउ प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली हुसैन व साथी का शहनाई पर बजाया राग बागेश्री। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।
1: यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद अली हुसैन एंड पार्टी इन राग बागेश्री। रागम 24/7 DTH anytime Indian music. This program was the contribution of All India Radio Lucknow.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार हैं M.R. गौतम. राग है लाचारी तोड़ी. विलंबित ख्याल एक में निबद्ध है. बोल हैं एरी लंगर तुरक. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं कैसे के जाऊं अपने ढिंगवा. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल द दुखां और सारंगी पर समद खां. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1993 की गई थी. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग लाचारी तोड़ी. The accompaniment has been provided by Ismail the Dukhan on the tabla and Samadha on the sarangi. This was recorded in the year 1993.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं M.R. गौतम। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बागेश्री अंग का चंद्रकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बीत गए दिन रैन तुमरे कारण। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं अथक मन भायो रे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग चंद्रकौंस ऑफ द बागेश्री अंग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन। कलाकार थे M.R. गौतम। संगत कलार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय M.R. गौतम। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं ला मनाए, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Tintal. The lyrics of this composition are Allahi Jane, Allahi Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगत की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध, बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अल्हैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और आरंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अल्हैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं रेखा गोखले के स्वर में। यह भक्ति रचना है सुधांशु की।

सुधांशु ने लिखी भक्ति रचना अभी आपने सुनी रेखा गोखले के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना।

संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी इंद्रजीत पवार के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखामेळा की भक्ति रचना।

जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मीणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना मधुसूदन कानेटकर के स्वर में।

मधुसूदन कानेट करके स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में सुनते हैं ये भक्ति रचना।

संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं मंगला जोशी और ऋषिकेश बोड़स के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने मंगला जोशी और ऋषिकेश बोड़स के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राजस्थानी की भक्ति रचना, जिसे गाया है उषा अत्रे ने।

राजस्थानी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उषा अत्रे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है ब्रह्मानंद महाराज की, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है सुधीर फड़के ने।